0: सबै राम्रो सधैं हाम्रो रेडियो संखुवा सभा 95.5 मेगाहर्ज सधैं सुन्नु होला।
1: यस कान्तिपुर डायरीका साथमा
2: हुलास ग्याल्भलम तीन गुणा बढी टिक्छ, हुलास भए अरू किन खोज्ने।

0: क्या तुम अपना गया दिन की आपने दिन के बारे में जान चाहौ तसो हो भोले आश ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन में
1: हमारा यहाँ वृंदावन बठे ज्योतिष विद्या पढ़वटी आया ज्योतिष विद्या का बारे में बहुत ही जानकारी भैया बहुत ही वर्ष अगाड़ी बठे ज्योतिष विद्या का बारे में जानने देश र परदेश में सम्मान र ख्याति पाया ज्योतिष पंडित लक्ष्मण सुवेदी ने कंप्यूटर का माध्यम बठे चिना चिठा बनाने रे चिठा भाग्य हेद्या घर बनाऊना की लेखा माटो हेद्या वास्तुशास्त्र का बारे में सब बताने पीर्ति को उद्धार गद्या रत्नले जन्तर बीज लाउने जन्म कुण्डलीमा भएको दोष ग्रहको शान्ति विशेष धार्मिक रे बौद्धिक विधि बठे गद्या
0: सम्पर्क की लेखाए ज्योतिष पण्डित लक्ष्मण सुवेदी ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन
1: फोन गद्दा की लेखा फोन नम्बर 9845-39-76-58 रे 9814-27-36-01 तमु फोन बठेलाई आफ्नो भाग्य हेर्न सकन्छौ आज संगीतमय पुराण लगाउन एक लेखालाई सम्झन सकन्छौ

आजकल एआई वॉइस एक वीडियो को माध्यम ठगिंग करने डिजिटल लेंडिंग भन्द झूठो लोन एप बना स्कैमिंग करने क्रिप्टो र इन्वेस्टमेंट ट्रैप फेक बैंक सर्वे व अफर को माध्यम ठगिंग करने ठगर को बिग बिगी बढ़े होना इसका ठगर सावधान रहो कुछ समस्या पड़े में व आपू ठगिए बैंक में व नजिक को प्रहरी में खबर करो वित्तीय तथा विद्युतीय माध्यम को कारोबार को सचेतना का लागि सानिमा बैंक द्वारा जारी

कारणले गर्ने सिक्नु जे बच्चा राउ समुझे थाउ छै तिमी सबको बता राउ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता राउ सुने नहीं है मम्मी डैडी को मैं कैसे बनाऊ तुझे दिल बोली पसंद है हिंदी खाने से बनाऊ तुमने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी जाके पहली टिकट कटा

कारण के नेतृत्व मुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे पाउच फिर भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सबसे बता रहा हूँ, समझे मैं दिल्ली खाने के बाद में आया है, तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट चढ़ा रहा हूँ।